स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

स्वर बल बहादुर वाइबा, प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

0: रेडियो मेलम्ची 107.2 MHz
1: चर्चित एवं लोकप्रिय गायक बलबहादुर वाइबाको नयाँ लोकसेलो एल्बम कति राम्री बाहुनी।

स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।